एक का एफ एम कौआ ओल नई पंगम तन कुछ अवंगा प्रोग्राम को सऊ जैसे का के राधो के कबे तु का खई से पंगम कोई खई तो राधो के निमरो या वन टेन से बा पेन ने खा एफ एम अम तो कोई अवंगा ओलंग कोई सा को जैसे का के प्रोग्राम को ना के मासे दे मै कुम से मोला के ने खेरे आदि जगे कोई मते छोंगो के क्वांखन गुसु पागे ट्विंडा खमनिते mo don ngo gola kon de ka wo de ng pa ngo gu si de chim ma de ng ke wo la ngo kon na ale kwa bu kham ngo mu tu tu ko ngo ba wo la ngo ji chang gu sa ka bu ji chi ga ko kon ta ke ra du gu si de ke ka wo la ngo em ten chong ngo gu ale kwa bu kham ke mo ngo ma so ten du tong ngo ba wo la ngo